0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने यीशु के दो राजदों पर चिंतन किया जो ख्रिस्तियों को आपसी प्रेम में जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहला भ्रातृपूर्ण सुधार और दूसरा एक दूसरे को भाई एवं बहन की तरह प्यार करना। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 6 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाई एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
0: ईश्वचन जिसको इस रविवार की धर्म विधि में घोषित किया गया हमें सोचने और कार्य करने के लिए एक मौलिक मानदंड प्रदान करता है। रोमियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि सभी आज्ञाओं का सार इन शब्दों में है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत पापा ने कहा,
1: San Paolo insiste su questo punto.
0: संत पौलुस एक प्रभावशाली छवि के द्वारा इस बिंदु पर जोर देते हैं जो प्रभु की प्रार्थना में भी दिखाई देता है। वे लिखते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने।
1: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
0: यीशु ने हमें माफ मांगना और माफ देना सिखाया है, फिर भी एक ऐसा कर्ज है जो हम एक दूसरे के प्रति निभाते हैं जो हमें गुलाम नहीं बनाता, वह है आपसी प्रेम का कर्ज। हमें जो भी ध्यान, देखभाल और अच्छाई मिली है वह हमें अधिक स्वतंत्र और जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाती है। इस रविवार के सुसमाचार पाठ में यीशु हर क्रिस्त समुदाय को आपसी प्रेम के दो तरीके बताते हैं। पहला, भाईचारे के साथ सुधार करने के काबिल बनना। संत पापा ने कहा कि यह एक नाजुक कला है जिससे अक्सर भुला दिया जाता है, जिसके लिए स्पष्टता और धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत होती है। एक दूसरे से ईमानदारी से बात करना होता है, पहले आमने सामने, फिर अगर जरूरी हो तो दो या तीन और लोगों के साथ, और अगर आवश्यक हो तो अंत में पूरे समुदाय के साथ। इसका मतलब है सच्चाई का सामना करना और समस्याओं और झगड़ों को आगे बढ़ने के अवसर में बदलना। संत पापा ने कहा, शिकायत करना और दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन उनसे कुछ हासिल नहीं होता और कई हालात बेकार हो जाते हैं। इसके बजाय सुसमाचार हमें वह स्वतंत्रता सिखाता है जो दया से मिलती है। प्रेम करने के दूसरे रास्ते पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा,
1: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
0: भाइयों और बहनों की तरह एक दूसरे से प्यार करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसके कारण यीशु हमारी प्रार्थना को भी बदल देते हैं। वे एक समझौते पर पहुंचने की सलाह देते हैं। यह सिर्फ तब नहीं जब कोई झगड़ा ना हो, बल्कि तब भी जब ईश्वर से कोई वरदान मांग रहे हों। प्रभु कहते हैं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। यह प्रतिज्ञा हमें सुझाव देती है कि हमारी इच्छाएं, दुख और उम्मीदें एक जैसी हो सकती हैं और प्रार्थना से हम एकता में बढ़ सकते हैं। विश्वास के बिना हर कोई अकेला महसूस करता है और दूसरों पर शक करने लगता है, उन्हें अजनबी और दुश्मन समझ सकता है, लेकिन कृपा से हम भाई बहन बनते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को माफ कर सकते हैं और प्रभु में एक दूसरे को सुन सकते हैं। तब माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta.
0: आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें जो दूत संवाद पाकर शीघ्रता से अपनी कुटुम्बनी एलिजाबेथ के पास चली गई थी कि उन्हें गर्भ धारण करने की खुशी एवं कठिनाई साझा कर सकें। हमें भी भ्रातृ प्रेम के साथ आनंदमय ऋण चुकाना सिखाएं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने दुनिया भर की विभिन्न घटनाओं की याद की और पीड़ितों को अपनी सहानुभूति प्रदान की। सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों को भारी मन से याद किया जो लगातार हमले के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा,
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
0: मैंने बहुत भारी मन से यूक्रेन के कई शहरों और नागरिक संरचनाओं पर विगत दिनों हुए हिंसक हमलों की खबरें सुनी हैं, जिनमें बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। रूस ने गर्मी में यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिसके शिकार आम नागरिक हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में रूसी मिसाइल एवं ड्रोन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि हमले मिलिट्री को टारगेट करके किए गए हैं, लेकिन हाल के हमलों ने बड़े आबादी वाले इलाकों में अपार्टमेंट बिल्डिंग, प्राइवेट घर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रास्तों को बर्बाद कर दिए हैं। पोप ने यूक्रेन के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा,
1: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione.
0: मेरा दिल उन लोगों की तकलीफों के लिए दुखी है जो सालों से पीड़ा और डर में जी रहे हैं। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कि हिंसा खत्म की जाए, तबाही रोकी जाए, बातचीत और शांति के लिए दिल खोला जाए। फिर उम्मीद जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हाल के दिनों में बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश ठोस नतीजे पर आएगी और कूटनीति का रास्ता खोलेगी। उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Eleviamo la nostra preghiera al Signore.
0: आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि दुनिया के सभी झगड़ों पर सद्भाव प्रबल हो। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और यहाँ आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: Auguro a tutti una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। धन्या कुमारी मरियम के जन्म के त्योहार के एक दिन पहले आज शाम 7 सितंबर को संत पापा लियो 14वें रोम से करीब 40 किलोमीटर दूर अगुस्टीनियनों के पसंदीदा पवित्र स्थान जेनासानो में भली सलाहकारिणी मां मरियम के गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। संत पापा परमाध्यक्ष बनने के दो दिन बाद 10 मई 2025 को वहां पहुंचे थे। जेनासानो के पियासा देल पाचे में शाम 4:30 बजे संत पापा के आने की उम्मीद है और वे एक पापा मोबाइल से श्राइन पहुंचेंगे। रास्ते में भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद महागिरजाघर के सामने संत पापा का स्वागत स्थानीय अधिकारियों, अगुस्टीनियन समुदाय और तिवोली और पालेस्त्रीना धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष माउरो परमेजानी करेंगे। जैनासानो में खुशी का माहौल है। लोग बेसब्री से संत पापा लियो 14वें के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस छोटे से शहर में अगुस्टीनियन परिवार की सबसे प्यारी जगहों में से एक है। और संत पापा लियो 14वें ने शनिवार शाम 5 सितंबर को वाटिकन उद्यान में होने वाले सालाना पारिवारिक समारोह के दौरान सैकड़ों वाटिकन कर्मचारियों और उनके परिवारों से मुलाकात की। सचिवालय प्रांगण में इकट्ठा हुए माता पिताओं और बच्चों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की एक बात याद की, परिवार एक आईना है जिसमें ईश्वर खुद को देखते हैं। संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर खुद को हमारे समुदाय में, हमारे परिवार में देखना चाहते हैं। ईश्वर आपके परिवार में मौजूद है। फिर उन्होंने पारिवारिक जीवन में पाए जाने वाले दो सबसे बड़े चमत्कारों के बारे में बातें की, जीवन देना और प्यार देना। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को, आपके परिवारों को इस महान चमत्कार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। संत पापा ने परिवारों को प्रोत्साहित किया कि वे हर दिन खुद को ईश्वर का आईना समझें और यह फिर से जानें कि सिर्फ अपने लिए जीने की बजाय जीवन और प्यार देने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, हमें मतलबी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना जीवन दूसरों के लिए, परिवार में, दोस्तों के बीच और उन लोगों के लिए भी देना चाहिए जो अभी तक आपके दोस्त नहीं बने हैं। संत पापा लियो ने आगे कहा, आज शाम का हमारा यह समारोह भी ईश्वर के प्यार का आईना हो और प्रार्थना की कि परिवार वह खुशी, साथ रहने वाली खुशी महसूस कर सके जो सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। अपना भाषण समाप्त करने के बाद संत पापा लियो घूम घूम कर परिवारों का अभिवादन किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चों को गले लगाया और उनके पास आने वालों से थोड़ी देर बातें की। उधर रविवार सुबह दक्षिण लेबनान के कई कस्बों में हुए इजरायली हमलों में कम से कम 4 लोग मारे गए। पीड़ितों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, जबकि बम धमाकों में खासतौर पर नबाती इलाका प्रभावित हुआ, जिसमें घरों और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था, जो उसके सैनिकों के कब्जे वाले इलाकों में इजरायली सैनिकों पर हुए थे। लेबनान से मिली जानकारी के मुताबिक नबाती अल फौका में 2 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। नबाती शहर के एक इलाके में 1 महिला और 1 बच्चे समेत 8 और लोग घायल हो गए। बमबारी की नई लहर दक्षिणी लेबनान में अन्य इसराइली हमलों के ठीक 2 दिन बाद आई है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को निकासी की चेतावनी के बिना की गई छापेमारी में 4 लोग मारे गए और 23 घायल हो गए। इसराइली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया है। जून में अमेरिकी मध्यस्थता के साथ युद्ध विराम पर सहमति के बावजूद इसराइली हमले कभी नहीं रुके हैं। वास्तव में इसराइल दक्षिणी लेबनान में अपने द्वारा घोषित सुरक्षा क्षेत्र में काम करना जारी रखा है, जबकि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर लेबनान सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया, जो अमेरिका की देखरेख में इसराइल के साथ सीधी बातचीत

विद्यालय के अकादमिक सेंटर के साथ भागीदारी में बनाई गई है और यह अलग अलग धार्मिक परंपराओं का अभ्यास करने वालों और अकादमिक विषयों के विद्वानों को एक साथ लाएगी। यह फोरम शहर और बड़े इलाके में रोजमर्रा की जिंदगी की असलियत से जुड़ते हुए यरूशलेम के सार्वभौमिक मिशन की जांच करने की कोशिश करता है। इसके खोज के एरिया में यरूशलेम का ईशास्त्रीय महत्व, शहर का सार्वभौमिक बुलाहट, संघर्ष और सुलह की भाषा और मजबूरी की स्थितियों में संस्था के सवाल शामिल होंगे। कार्डिनल पिज्जाबाला प्रवर्तकों की समिति के सभापति के तौर पर काम करेंगे और यरूशलेम में लॉन्च कार्यक्रम में इस पहल के लिए अपना विजन पेश करेंगे। इस समारोह में ऐसे विद्वान और व्यवसायी शामिल होंगे जो फोरम के प्रवर्तकों की समिति या सलाहकार समिति में काम करते हैं। उधर वाटिकन मीडिया के अंद्रेया तोर्नेली के साथ एक साक्षात्कार में लैटिन धर्म प्रांत के विकर धर्माध्यक्ष इयाद डवाल इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय और शांति नहीं होगी, हम हमेशा संकट की स्थिति में होंगे। वे अपने देश जॉर्डन के हालत के बारे में बताते हैं। वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के नतीजों के बारे में बातें की। भौगोलिक रूप से जॉर्डन ठीक बीच में है। सरकार और राजा के साथ मिलकर हमने रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने यीशु के दो राजदों पर चिंतन किया जो ख्रिस्तियों को आपसी प्रेम में जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहला भ्रातृपूर्ण सुधार और दूसरा एक दूसरे को भाई एवं बहन की तरह प्यार करना। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 6 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों शुभ रविवार।
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
0: ईश्वचन जिसको इस रविवार की धर्म विधि में घोषित किया गया हमें सोचने और कार्य करने के लिए एक मौलिक मानदंड प्रदान करता है। रोमियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि सभी आज्ञाओं का सार इन शब्दों में है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत पापा ने कहा,
1: San Paolo insiste su questo punto.
0: संत पौलुस एक प्रभावशाली छवि के द्वारा इस बिंदु पर जोर देते हैं जो प्रभु की प्रार्थना में भी दिखाई देता है। वे लिखते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने।
1: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
0: यीशु ने हमें माफ मांगना और माफ देना सिखाया है, फिर भी एक ऐसा कर्ज है जो हम एक दूसरे के प्रति निभाते हैं जो हमें गुलाम नहीं बनाता, वह है आपसी प्रेम का कर्ज। हमें जो भी ध्यान देखभाल और अच्छाई मिली है वह हमें अधिक स्वतंत्र और जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाती है। इस रविवार के सुसमाचार पाठ में यीशु हर ख्रिस्त समुदाय को आपसी प्रेम के दो तरीके बताते हैं। पहला भाईचारे के साथ सुधार करने के काबिल बनना। संत पापा ने कहा कि यह एक नाजुक कला है जिससे अक्सर भुला दिया जाता है, जिसके लिए स्पष्टता और धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत होती है। एक दूसरे से ईमानदारी से बात करना होता है, पहले आमने सामने, फिर अगर जरूरी हो तो दो या तीन और लोगों के साथ, और अगर आवश्यक हो तो अंत में पूरे समुदाय के साथ। इसका मतलब है सच्चाई का सामना करना और समस्याओं और झगड़ों को आगे बढ़ने के अवसर में बदलना। संत पापा ने कहा, शिकायत करना और दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन उनसे कुछ हासिल नहीं होता और कई हालात बेकार हो जाते हैं। इसके बजाय सुसमाचार हमें वह स्वतंत्रता सिखाता है जो दया से मिलती है। प्रेम करने के दूसरे रास्ते पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा,
1: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
0: भाइयों और बहनों की तरह एक दूसरे से प्यार करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसके कारण यीशु हमारी प्रार्थना को भी बदल देते हैं। वे एक समझौते पर पहुंचने की सलाह देते हैं, यह सिर्फ तब नहीं जब कोई झगड़ा ना हो बल्कि तब भी जब ईश्वर से कोई वरदान मांग रहे हों। प्रभु कहते हैं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। यह प्रतिज्ञा हमें सुझाव देती है कि हमारी इच्छाएं, दुख और उम्मीदें एक जैसी हो सकती हैं और प्रार्थना से हम एकता में बढ़ सकते हैं। विश्वास के बिना हर कोई अकेला महसूस करता है और दूसरों पर शक करने लगता है, उन्हें अजनबी और दुश्मन समझ सकता है, लेकिन कृपा से हम भाई बहन बनते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को माफ कर सकते हैं और प्रभु में एक दूसरे को सुन सकते हैं। तब माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta.
0: आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें जो दूत संवाद पाकर शीघ्रता से अपनी कुटुम्बनी एलिजाबेथ के पास चली गई थी कि उन्हें गर्भ धारण करने की खुशी एवं कठिनाई साझा कर सकें। हमें भी भ्रातृ प्रेम के साथ आनंदमय ऋण चुकाना सिखाएं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने दुनिया भर की विभिन्न घटनाओं की याद की और पीड़ितों को अपनी सहानुभूति प्रदान की। सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों को भारी मन से याद किया जो लगातार हमले के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा,
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
0: मैंने बहुत भारी मन से यूक्रेन के कई शहरों और नागरिक संरचनाओं पर विगत दिनों हुए हिंसक हमलों की खबरें सुनी हैं, जिनमें बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। रूस ने गर्मी में यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिसके शिकार आम नागरिक हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में रूसी मिसाइल एवं ड्रोन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि हमले मिलिट्री को टारगेट करके किए गए हैं, लेकिन हाल के हमलों ने बड़े आबादी वाले इलाकों में अपार्टमेंट बिल्डिंग, प्राइवेट घर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रास्तों को बर्बाद कर दिए हैं। पोप ने यूक्रेन के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा,
1: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione.
0: मेरा दिल उन लोगों की तकलीफों के लिए दुखी है जो सालों से पीड़ा और डर में जी रहे हैं। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कि हिंसा खत्म की जाए, तबाही रोकी जाए, बातचीत और शांति के लिए दिल खोला जाए। फिर उम्मीद जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हाल के दिनों में बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश ठोस नतीजे पर आएगी और कूटनीति का रास्ता खोलेगी। उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Eleviamo la nostra preghiera al Signore.
0: आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि दुनिया के सभी झगड़ों पर सद्भाव प्रबल हो। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और यहाँ आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: Auguro a tutti una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। धन्या कुमारी मरियम के जन्म के त्योहार के एक दिन पहले आज शाम 7 सितंबर को संत पापा लियो 14वें रोम से करीब 40 किलोमीटर दूर अगुस्टीनियनों के पसंदीदा पवित्र स्थान जेनासानो में भली सलाहकारिणी माँ मरियम के गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। संत पापा परमाध्यक्ष बनने के दो दिन बाद 10 मई 2025 को वहां पहुंचे थे। जेनासानो के पियासा देल पाचे में शाम 4:30 बजे संत पापा के आने की उम्मीद है और वे एक पापा मोबाइल से श्राइन पहुंचेंगे। रास्ते में भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद महागिरजाघर के सामने संत पापा का स्वागत स्थानीय अधिकारियों, अगुस्टीनियन समुदाय और तिवोली और पालेस्त्रीना धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष मौरो परमेजानी करेंगे। जेनासानो में खुशी का माहौल है। लोग बेसब्री से संत पापा लियो 14वें के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस छोटे से शहर में अगुस्टीनियन परिवार की सबसे प्यारी जगहों में से एक है। और संत पापा लियो 14वें ने शनिवार शाम 5 सितंबर को वाटिकन उद्यान में होने वाले सालाना पारिवारिक समारोह के दौरान सैकड़ों वाटिकन कर्मचारियों और उनके परिवारों से मुलाकात की। सचिवालय प्रांगण में इकट्ठा हुए माता पिताओं और बच्चों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की एक बात याद की, परिवार एक आईना है जिसमें ईश्वर खुद को देखते हैं। संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर खुद को हमारे समुदाय में, हमारे परिवार में देखना चाहते हैं। ईश्वर आपके परिवार में मौजूद हैं। फिर उन्होंने पारिवारिक जीवन में पाए जाने वाले दो सबसे बड़े चमत्कारों के बारे में बातें की, जीवन देना और प्यार देना। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को, आपके परिवारों को इस महान चमत्कार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। संत पापा ने परिवारों को प्रोत्साहित किया कि वे हर दिन खुद को ईश्वर का आईना समझें और यह फिर से जानें कि सिर्फ अपने लिए जीने की बजाय जीवन और प्यार देने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, हमें मतलबी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना जीवन दूसरों के लिए, परिवार में, दोस्तों के बीच और उन लोगों के लिए भी देना चाहिए जो अभी तक आपके दोस्त नहीं बने हैं। संत पापा लियो ने आगे कहा, आज शाम का हमारा यह समारोह भी ईश्वर के प्यार का आईना हो और प्रार्थना की कि परिवार वह खुशी, साथ रहने वाली खुशी महसूस कर सके जो सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। अपना भाषण समाप्त करने के बाद संत पापा लियो घूम घूम कर परिवारों का अभिवादन किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चों को गले लगाया और उनके पास आने वालों से थोड़ी देर बातें की। उधर रविवार सुबह दक्षिण लेबनान के कई कस्बों में हुए इजरायली हमलों में कम से कम 4 लोग मारे गए। पीड़ितों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, जबकि बम धमाकों में खासतौर पर नबाती इलाका प्रभावित हुआ, जिसमें घरों और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था, जो उसके सैनिकों के कब्जे वाले इलाकों में इजरायली सैनिकों पर हुए थे। लेबनान से मिली जानकारी के मुताबिक नबाती अल-फौका में 2 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। नबाती शहर के एक इलाके में 1 महिला और 1 बच्चे समेत 8 और लोग घायल हो गए। बमबारी की नई लहर दक्षिणी लेबनान में अन्य इसराइली हमलों के ठीक 2 दिन बाद आई है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को निकासी की चेतावनी के बिना की गई छापेमारी में 4 लोग मारे गए और 23 घायल हो गए। इसराइली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया है। जून में अमेरिकी मध्यस्थता के साथ युद्ध विराम पर सहमति के बावजूद इसराइली हमले कभी नहीं रुके हैं। वास्तव में इसराइल दक्षिणी लेबनान में अपने द्वारा घोषित सुरक्षा क्षेत्र में काम करना जारी रखा है, जबकि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर लेबनान सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया, जो अमेरिका की देखरेख में इसराइल के साथ सीधी बातचीत कर रही है।
उधर यरूशलेम के लाटिन प्रादी धर्माध्यक्ष ने विदिन योर गेट्स आपके दरवाजे के अंदर नाम की एक पहल शुरू की है जो अलग अलग धार्मिक परंपराओं और विषयों के विद्वानों और व्यवसायिकों को एक साथ लाती है ताकि वे पवित्र शहर के सार्वभौमिक मिशन पर सोच विचार कर सकें। आपके दरवाजों के अंदर यरूशलेम का सार्वभौमिक बुलाहट के लिए फोरम 7 सितंबर 2026 को यरूशलेम में शुरू किया जा रहा है। यह पहल यरूशलेम में नोटर डेम विश्वविद्यालय के एकेडमिक सेंटर के साथ भागीदारी में बनाई गई है और यह अलग अलग धार्मिक परंपराओं का अभ्यास करने वालों और एकेडमिक विषयों के विद्वानों को एक साथ लाएगी। यह फोरम शहर और बड़े इलाके में रोजमर्रा की जिंदगी की असलियत से जुड़ते हुए यरूशलेम के सार्वभौमिक मिशन की जांच करने की कोशिश करता है। इसके खोज के एरिया में यरूशलेम का ईश शास्त्रीय महत्व, शहर का सार्वभौमिक बुलाहट, संघर्ष और सुलह की भाषा और मजबूरी की स्थितियों में संस्था के सवाल शामिल होंगे। कार्डिनल पिज्जाबाला प्रवर्तकों की समिति के सभापति के तौर पर काम करेंगे और यरूशलेम में लॉन्च कार्यक्रम में इस पहल के लिए अपना विजन पेश करेंगे। इस समारोह में ऐसे विद्वान और व्यवसायी शामिल होंगे जो फोरम के प्रवर्तकों की समिति या सलाहकार समिति में काम करते हैं। उधर वाटिकन मीडिया के अंद्रेया तोर्नेली के साथ एक साक्षात्कार में लैटिन धर्म प्रांत के विकर धर्माध्यक्ष इयाद टवाल इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय और शांति नहीं होगी, हम हमेशा संकट की स्थिति में होंगे। वे अपने देश जॉर्डन के हालत के बारे में बताते हैं। वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के नतीजों के बारे में बातें की। भौगोलिक रूप से जॉर्डन ठीक बीच में है। सरकार और राजा के साथ मिलकर हमने रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
3: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के

0: समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हमारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है माता मरियम के जन्म दिवस ख्रिस्तियाग में संत पापा लियो का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने विला नुवाभा में माता मरियम के जन्म का ख्रिस्तियाग अर्पित करते हुए माता मरियम से निवेदन किया कि वे विश्व और हमारे बीच शांति प्रसारित करने में मदद करें। संत पापा ने 7 सितंबर को माता मरियम के जन्म का समारोही मिसा बलिदान जिनजानो अच्छी सलाहकारिणी माता मरियम तीर्थ में अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, परम धर्माध्यक्षीय काल के शुरू से ही मैंने जिनजानो माता मरियम एक अच्छी सलाहकारिणी तीर्थ स्थल आने की तीव्र चाह रखी, जिन्होंने मेरे पूरे जीवन को अपने मातृत्व में सहचर्य, अपनी प्रज्ञा और अपने पुत्र के लिए उदाहरण भरे प्रेम से भर दिया है, जो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु हैं। उस खुशी में मैं पुनः आप सबों के संग पवित्रतम कुमारी मरियम के जन्म का जागरण मनाने और इस अद्वितीय मानवता को नन्ही कुमारी को समर्पित करने आता हूँ, क्योंकि इस शक्ति से उसका जन्म होता है जो एक अंकुर की भांति है, लेकिन यह हमारे लिए ईश्वरीय निष्ठा की निशानी है। हाँ, मरियम एक अलग भोर का तारा है, हमारे समय की दुनिया में बुराई से मुक्त। हमारी मुक्ति उनमें आती और हमें परिवर्तित करती है, जहाँ पुत्र में हम ईश्वर के संतान बनते हैं। हम उनसे अच्छी सलाह की मांग करें, जिससे हम दिव्य वचनों का स्वागत कर सकें और साहसपूर्ण और विवेक में निर्णय के माध्यम सच्चे मन परिवर्तन का साक्ष्य दे सकें। संत पापा लियो ने कहा, इस संत अगुस्टिन की प्राचीन उपस्थिति के स्थल में मैं सुसमाचार, जिसे हमने अभी सुना है, लौट कर आता हूँ, जिसे विला नोभा के संत थॉमस ने अपने जीवन से दरिद्रों की सेवा में घोषित किया, जो हमें सच्चे विश्वास की गहराई तक जाने में मदद करता है। वे मरियम के छोटेपन विरोधाभाव को समझते हैं, जो हमारे लिए मुक्ति की योजना की केंद्र बिंदु है। हम स्वयं से पूछ सकते हैं, ज्वाकीम और अन्ना के लिए एक लड़की के जन्म का अर्थ क्या हो सकता है? संत थॉमस इसके उत्तर में कहते हैं, मैंने इस पर कई बार चिंतन किया है। वे लिखते हैं, मैंने इस बारे में सवाल किया है कि सुसमाचार लेखकों ने, जिन्होंने योहान बपतिस्ता और प्रेरितों के बारे में लंबी चर्चा की, मरियम को संक्षेपित क्यों करते हैं, जो सारी चीजों को अपने अनुभव और व्यक्तित्व में सारगर्भित बनाती है। हमारे लिए क्यों उनके जन्म, शिक्षा, आदतों, गुणों, जिससे वे पोषित हैं, अपने पुत्र के संग उनका संबंध कैसा रहा, वे उनके संग कैसे पेश आईं, वे स्वर्गारोहण के उपरांत शिष्यों के संग कैसे रहीं, का जिक्र नहीं किया जाता है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। ओ सुसमाचार लेखकों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्यों आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहते हुए हमें इस आनंद से वंचित किया है? क्यों आपने हमें इस बहुप्रतीक्षित खुशी से अछूता छोड़ा? संत पापा लियो ने कहा,
2: Troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.
1: कि इन शब्दों में हम अपने लिए विश्वास की महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं। सुसमाचार लेखकों को सवाल करते हुए उनसे वाद विवाद और साक्ष्यों के संग वार्ता में हम अपने को मित्रों स्वरूप पाते हैं। वास्तव में हम ईश निवास में रहने वाले संतों और सदस्यों के संग निवास करने वालों के रूप में हैं। मरियम से हम अपने विवेक में ईश्वर से बातें करना, उनसे सवाल करना और घटनाओं को परिभाषित करना सीखते हैं। हम उन्हें अपने हृदय के अंतस्थल में संजो कर रखते और उनसे संयुक्त होते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार, यद्यपि संत थॉमस को अपनी गोपनीयता का उत्तर देते हुए प्रतीत होता है, हमने इसके बारे में सुना, यह हमारे लिए मरियम की उपस्थिति का जिक्र करता है, लेकिन शब्दों में नहीं। मरियम की उपस्थिति और उनके गर्भ में उनके पुत्र की हलचल सारी कहानी को बयां करती है। मरियम की उपस्थिति वंशावली की ओर इंगित कराती है, एक अप्रत्याशित नएपन की तरह, जो न केवल व्यक्तियों के आशाओं को परिवर्तित करता है बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को घोषित करता है। योसेफ जिन बातों को सुनते, निर्णय लेते और उन्हें पूरा करते हैं, वे हमारे लिए ईश्वर के प्रति उत्तर और मरियम की उपस्थिति को व्यक्त करता है, जो सारे वार्ता और कहानियों से परे जाती है। मरियम में हम मुक्ति को पाते हैं, ईश्वर हमारे संग हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संत थॉमस आगे लिखते हैं, कुंवारी मरियम के कार्यों की चर्चा नहीं करना जैसे कि संत पौलुस के कार्यों के लिए किया गया है। इस बात पर चिंतन करना हमारे जेहन में एक बात को लेकर आती है कि यह पवित्र आत्मा को प्रिय है और सुसमाचार लेखक स्वतः ही मरियम के संबंध में अपने को शांत रखते हैं। इसका कारण कुमारी की महिमा करना है, जैसे कि हम स्तोत्र 44 के पद 14 में पाते हैं, जिसके संबंध में चर्चा करने के बदले हम कल्पना कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए उनकी कहानी है, जिसका शीर्षक यीशु का जन्म उनसे हुआ अपने में काफी है। इससे अधिक और आप क्या जानना चाहते हैं? इससे बढ़कर आप मरियम में क्या खोजते हैं? यह जानना हमारे लिए काफी है कि वे ईश्वर की माता हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इस रहस्य के सम्मुख हम अपने को विस्मित पाते हैं, हम इसे सहज ही नहीं ले सकते हैं। हम एक बच्चे के जन्म का त्योहार मनाते हैं, जो सृष्टिकर्ता की माता होने के लिए चुनी गई, ईश्वर की माता जो हमें बचाते हैं। यद्यपि उनका जन्म एक साधारण बच्चे की तरह हुआ, जैसे कि हम नाती पोतों को अपनी बाहों में लेते हैं, आज हम उन्हें एक ऊंची पदवी, नारी और रानी की संज्ञा देते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना अपने में साधारण और गुप्त है। यद्यपि वह शक्तिशाली और परिवर्तनशील से कम नहीं है, इस भांति मरियम की तरह हम भी ईश्वर के संतान के रूप में अपने को पाते हैं कृपा के द्वारा। इसके साथ ही निश्चित रूप में उनकी चाह चुनाव में और उनके मार्गों में आगे चलने के द्वारा यीशु ख्रिस्त में ईश्वर ने नम्र इतिहास की स्थितियों और अपने श्रेष्ठ प्राणी का चुनाव किया है, जिससे वे अपने राज्य के अद्वितीय रूप को प्रकट कर सकें, जिसमें घमंड का कोई स्थान नहीं है और जिसमें हम सृष्टि, सेवा और जीवन के चिंतन की सर्वशक्तिमता को पाते हैं। विला नोवा के संत थॉमस आगे कहते हैं, हम अपनी कल्पना को दौड़ने दें, अपनी समझ को विस्तृत होने दें और अपनी आत्मा को एक युवा नारी की तस्वीर से रेखांकित करें, जो अति शुद्ध, सौम्य, सुंदर, भक्तिमय, नम्र, कोमल, कृपा से पूर्ण, पवित्रता में समृद्ध, सभी गुणों से पोषित, हर आदर्श से ढकी, ईश्वर को प्रिय है। हम अपनी ओर से जितना हो सके उनके बारे में कल्पना कर सकते हैं। संत थॉमस हमें इस अति सुंदर कल्पना हेतु निमंत्रण देते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं, पवित्र आत्मा ने लेख में उनका जिक्र नहीं किया बल्कि उनकी छवि को हृदय के अंदर रेखांकित करने की प्रतिज्ञा की। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि यही कारण है कि चिंतन प्रार्थना में दुनिया जिन बातों की चर्चा नहीं करती, हम उन्हें देखते हैं, वे पहले से उपस्थित हैं, वे चीजें जो अदृश्य हैं, यद्यपि उनमें एक नई तरह की शक्ति भरी है। यह अपने में कल्पना नहीं है बल्कि यह भविष्यवाणी है, हमें इसकी जरूरत है। जब हम विनाश और अनिश्चितता को पाते हैं, जिससे हम ईश्वर के कार्य को देख सकें और उनकी महिमा कर सकें, संत पापा ने कहा कि छोटे बेतलहम में नबी मीका ने शांति के राजा के आगमन का एहसास किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं जिसकी शांति में हम जीवन यापन करते हैं। आज नन्ही मरियम की ओर आते हुए हम याचना करें कि उनके जन्म का महोत्सव शांति को प्रसारित करे। हम शांति की कामना करते हैं जो हमारे मध्य उपस्थित है, जो सीमाओं और हमारे हृदयों में अंकित है। यह ईश्वर का उपहार है, पुनर्जीवित ईश्वर की सांसें, पवित्र आत्मा के कार्य। आइए हम अपने अंदर शांति को बढ़ने दें, यह विश्व में प्रस्फुटित होगा। और अच्छी सलाह कारिणी माता मरियम इसकी प्रेरिताई में हमारी सहायता करे।
2: La madre del buon consiglio ci accompagnerà in questa missione.

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कार्तिक कलीसिया कुंवारी मरियम का जन्म दिवस मनाती है। संत पापलियो चौदहवें ने इस विशेष दिन की याद करते हुए पर्व के रहस्य पर चिंतन किया। उन्होंने एक संदेश में लिखा, आज हम एक छोटी बालिका के जन्म की खुशी मना रहे हैं, जिन्हें अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की मां बनने के लिए बुलाया जाएगा। फिर भी वे एक छोटी बच्ची के रूप में पैदा हुए, हमारी गोद में हमारी बेटियों और पोतियों की तरह। हम उन्हें सबसे ऊंचा एवं महान नाम देते हैं, जैसे महारानी, सर्वश्रेष्ठ नारी इत्यादि। लेकिन ईश्वर का रास्ता आसान और शांत था और है, यद्यपि वे कम शक्तिशाली और कम परिवर्तनकारी नहीं हैं। पश्चिमी अफ्रीकी युवा दिवस 2026 7 सितंबर को घाना के आकरा में शुरू हुआ। 16 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के युवा कैथलिक इस विषय पर एक साथ एकत्रित हैं। हिम्मत रखें युवा कैथलिक पश्चिम अफ्रीका में शांति और आशा के एजेंट एवं प्रवर्तक। पहले दिन प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और घाना की संस्कृति की जानकारी हासिल की गई, जिसके बाद रोजरी और चिंतन के साथ पौत्र यूखरिस्त की आराधना की गई। मंगलवार 8 सितंबर को युवाओं ने विश्वास में निहित गवाही में सासी विषय वस्तु के हिसाब से विश्वास एवं सांस्कृतिक विषयों पर बात की। क्रिस त्याग के बाद एक कार्यशाला के दौरान डिजिटल सुसमाचार प्रचार, समाचार क्षेत्र में विश्वास, मिशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, विषय वस्तु पर ध्यान दिया गया। फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग प्रतिनिधियों को अपने अपने देशों के संस्कृति, नृत्य और कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का मौका मिला। तीसरे दिन मिशन के लिए सशक्त विषय के तहत नेतृत्व एवं सामाजिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। धर्मदक्ष के संदेश एवं दिन के वर्कशॉप में दूसरे टॉपिक के साथ साथ पश्चिमी अफ्रीका में सामाजिक बदलाव में युवाओं की भूमिका, जलवायु न्याय, शांति निर्माण और अफ्रीकी उपक्षेत्रों में आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ एवं लड़ाई जैसे विषयों पर बात होगी। गुरुवार को प्रतिभागी विश्वास एवं सेवा में साथ साथ चलना विषय के तहत तीर्थ यात्रा और एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे मिशनरी बुलाहट के बारे में और जानेंगे तथा आगरा की एक पल्ली में मरियम दिवस में हिस्सा लेंगे, जिसमें मरियम पर एक धर्म शिक्षा, वापसी का संस्कार और पौत्र मिसा में भाग लेना शामिल है। मरियम को शांति की रानी और युवाओं के लिए एक आदर्श शिष्य के रूप में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को युवाओं को मिशन पर भेजा जाएगा, जिसकी विषय वस्तु होगी जाओ और आशा को बढ़ने में मदद करो। धर्मदक्ष अपने धर्म उपदेश में उन्हें शांति निर्माता और प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद खाना के प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदक्ष जूलियन कबोरे की अध्यक्षता में पौत्र मिस्सा होगा। अंत में शनिवार 12 सितंबर की सुबह युवा अपने अपने देश लौट जाएंगे और अपने साथ शांति, उम्मीद एवं मेल मिलाप का मिशन ले जाएंगे। पोप लियो चौदहवें ने वेस्ट अफ्रीका के युवाओं को उनके विश्वास की यात्रा में हौसला दी और उन्हें युद्ध एवं संघर्ष से घिरी दुनिया में प्यार, न्याय एवं शांति का संदेश लेकर जीने के लिए आमंत्रित किया। पोप ने घाना के आगरा में पहली बार वेस्ट अफ्रीका युवा दिवस के लिए एकत्रित हजारों युवाओं को अंग्रेजी एवं फ्रेंच में एक वीडियो संदेश दिया। यह कार्यक्रम 7 से 12 सितम्बर को आयोजित है और इसे पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रीय कैथलिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने आयोजित किया है। अपने संदेश में पोप ने 16 देशों के धर्मदक्षों की तारीफ की, जिन्होंने युवाओं को अपनी प्रेरिताई की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि साथ बिताए ये प्रभावशाली पल आपको विश्वास में बढ़ने और दूसरों से मिलने और खुलेपन जैसे मूल्यों से और भी ज्यादा बेहतर बनने में मदद करेंगे। पोप ने कहा कि युवा शक, अनिश्चितता और असुरक्षा के बोझ झेलते हैं, जिससे उनके भविष्य की योजना बिगड़ने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब इतने सारे संकट आपके क्षितिज को धुंधला कर रहे हैं, मैं आपको बिना उम्मीद खोए आगे बढ़ने का हौसला देना चाहता हूँ। अपनी मुश्किलों के बावजूद पोप ने वेस्ट अफ्रीकन युवाओं से कहा कि वे बलिदान की पीढ़ी से नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के आज, कलीसिया के आज हैं। उन्होंने पोप बेनेडिक्ट 16 का जिक्र करते हुए कहा, युवा क्षमताओं, ऊर्जा, सपनों और उम्मीदों से भरपूर होते हैं, और कहा कि उनका युवा होना ही कलीसिया और दुनिया के लिए एक खजाना है। पोप लियो ने युवाओं को अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक साथ चलने की चुनौती का सामना करने हेतु आमंत्रित किया।
उन्होंने कहा, साथ चलने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अलग थलग, अकेला, एकाकी या बहिष्कृत ना हो, लोग संस्कृति और धर्मों के बीच पुल बनाने वाले बने। उन्होंने कहा कि जैसे यीशु ने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचाना, वैसे ही युवाओं को भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और अपनी यात्रा में सभी को शामिल करना चाहिए। पोप ने आगरा में एकत्रित हुए युवाओं से कहा कि कलीसिया उन पर भरोसा करती है और उनकी नैतिकता पर यकीन करती है। उन्होंने कहा, अपने शब्दों और कामों से हमारी दुनिया को एक मजबूत संदेश दें जो हर तरह के युद्धों और झगड़ों से घिरी हुई है, प्यार, न्याय और शांति के गवाह बने। उन्होंने उनसे अपनी कीमती जवानी को बनावटी खुशियों और दिखावे की वेदी पर कुर्बान करने के बजाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद से आगे बढ़ने की अपील की और उन्हें माता मरियम को सौंप दिया। वैटिकन विदेश सचिव महाधमदश पॉल रिचर्ड गलागर ने असीसी में एक सेमिनार को संबोधित किया जिसको सेंट फ्रांसिस असीसी के निधन की 800वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। महाधमदश पॉल रिचर्ड गलागर ने कहा कि सच्ची बातचीत विविधताओं को खत्म नहीं करती बल्कि सहयोग के जरिए उनके एक साथ रहने के लिए परिस्थिति तैयार करती है। यह सेमिनार इस साल सेंट फ्रांसिस और मेल मिलाप के रास्ते को समर्पित है। सेमिनार असीसी के मेल मिलाप सभागार में संपन्न हुआ और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है माता मरियम के जन्म दिवस ख्रिस्तियाग में संत पापा लियो का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने विला नोवाभा में माता मरियम के जन्म का ख्रिस्तियाग अर्पित करते हुए माता मरियम से निवेदन किया कि वे विश्व और हमारे बीच शांति प्रसारित करने में मदद करें। संत पापा ने 7 सितंबर को माता मरियम के जन्म का समारोही मिसा बलिदान जिनजानो अच्छी सलाहकारिणी माता मरियम तीर्थ में अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, परम धर्माध्यक्षीय काल के शुरू से ही मैंने जिनजानो माता मरियम एक अच्छी सलाहकारिणी तीर्थ स्थल आने की तीव्र चाह रखी, जिन्होंने मेरे पूरे जीवन को अपने मातृत्व में सहचर्य, अपनी प्रज्ञा और अपने पुत्र के लिए उदाहरण भरे प्रेम से भर दिया है, जो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु है। उस खुशी में मैं पुनः आप सबों के संग पवित्रतम कुमारी मरियम के जन्म का जागरण मनाने और इस अद्वितीय मानवता को नन्ही कुमारी को समर्पित करने आता हूँ, क्योंकि इस शक्ति से उसका जन्म होता है जो एक अंकुर की भांति है, लेकिन यह हमारे लिए ईश्वरीय निष्ठा की निशानी है। हाँ, मरियम एक अलग भोर का तारा है, हमारे समय की दुनिया में बुराई से मुक्त। हमारी मुक्ति उनमें आती और हमें परिवर्तित करती है, जहाँ पुत्र में हम ईश्वर के संतान बनते हैं। हम उनसे अच्छी सलाह की मांग करें, जिससे हम दिव्य वचनों का स्वागत कर सकें और साहसपूर्ण और विवेक में निर्णय के माध्यम सच्चे मन परिवर्तन का साक्ष्य दे सकें। संत पापा लियो ने कहा, इस संत अगुस्टिन की प्राचीन उपस्थिति के स्थल में मैं सुसमाचार, जिसे हमने अभी सुना है, लौट कर आता हूँ, जिसे विला नोवा के संत थॉमस ने अपने जीवन से दरिद्रों की सेवा में घोषित किया, जो हमें सच्चे विश्वास की गहराई तक जाने में मदद करता है। वे मरियम के छोटेपन विरोधाभाव को समझते हैं, जो हमारे लिए मुक्ति की योजना की केंद्र बिंदु है। हम स्वयं से पूछ सकते हैं, ज्वाकीम और अन्ना के लिए एक लड़की के जन्म का अर्थ क्या हो सकता है? संत थॉमस इसके उत्तर में कहते हैं, मैंने इस पर कई बार चिंतन किया है। वे लिखते हैं, मैंने इस बारे में सवाल किया है कि सुसमाचार लेखकों ने, जिन्होंने योहन बपतिस्ता और प्रेरितों के बारे में लंबी चर्चा की, मरियम को संक्षेपित क्यों करते हैं, जो सारी चीजों को अपने अनुभव और व्यक्तित्व में सारगर्भित बनाती है। हमारे लिए क्यों उनके जन्म, शिक्षा, आदतों, गुणों जिससे वे पोषित हैं, अपने पुत्र के संग उनका संबंध कैसा रहा, वे उनके संग कैसे पेश आई, वे स्वर्गारोहण के उपरांत शिष्यों के संग कैसे रहीं, का जिक्र नहीं किया जाता है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। ओ सुसमाचार लेखकों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्यों आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहते हुए हमें इस आनंद से वंचित किया है? क्यों आपने हमें इस बहुप्रतीक्षित खुशी से अछूता छोड़ा? संत पापा लियो ने कहा,
2: troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.
1: कि इन शब्दों में हम अपने लिए विश्वास की महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं। सुसमाचार लेखकों को सवाल करते हुए उनसे वाद विवाद और साक्ष्यों के संग वार्ता में हम अपने को मित्रों स्वरूप पाते हैं। वास्तव में हम ईश निवास में रहने वाले संतों और सदस्यों के संग निवास करने वालों के रूप में हैं। मरियम से हम अपने विवेक में ईश्वर से बातें करना, उनसे सवाल करना और घटनाओं को परिभाषित करना सीखते हैं। हम उन्हें अपने हृदय के अंतस्थल में संजो कर रखते और उनसे संयुक्त होते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार यद्यपि संत थॉमस को अपनी गोपनीयता का उत्तर देते हुए प्रतीत होता है, हमने इसके बारे में सुना, यह हमारे लिए मरियम की उपस्थिति का जिक्र करता है, लेकिन शब्दों में नहीं। मरियम की उपस्थिति और उनके गर्भ में उनके पुत्र की हलचल सारी कहानी को बयां करती है। मरियम की उपस्थिति वंशावली की ओर इंगित कराती है, एक अप्रत्याशित नएपन की तरह, जो न केवल व्यक्तियों की आशाओं को परिवर्तित करता है बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को घोषित करता है। योसेफ जिन बातों को सुनते, निर्णय लेते और उन्हें पूरा करते हैं, वे हमारे लिए ईश्वर के प्रति उत्तर और मरियम की उपस्थिति को व्यक्त करता है, जो सारे वार्ता और कहानियों से परे जाती है। मरियम में हम मुक्ति को पाते हैं, ईश्वर हमारे संग हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संत थॉमस आगे लिखते हैं, कुंवारी मरियम के कार्यों की चर्चा नहीं करना जैसे कि संत पौलुस के कार्यों के लिए किया गया है। इस बात पर चिंतन करना हमारे जेहन में एक बात को लेकर आती है कि यह पवित्र आत्मा को प्रिय है और सुसमाचार लेखक स्वतः ही मरियम के संबंध में अपने को शांत रखते हैं। इसका कारण कुमारी की महिमा करना है, जैसे कि हम स्तोत्र 44 के पद 14 में पाते हैं, जिसके संबंध में चर्चा करने के बदले हम कल्पना कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए उनकी कहानी है, जिसका शीर्षक यीशु का जन्म उनसे हुआ अपने में काफी है। इससे अधिक और आप क्या जानना चाहते हैं? इससे बढ़कर आप मरियम में क्या खोजते हैं? यह जानना हमारे लिए काफी है कि वे ईश्वर की माता हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इस रहस्य के सम्मुख हम अपने को विस्मित पाते हैं, हम इसे सहज ही नहीं ले सकते हैं। हम एक बच्ची के जन्म का त्योहार मनाते हैं, जो सृष्टिकर्ता की माता होने के लिए चुनी गई, ईश्वर की माता जो हमें बचाते हैं। यद्यपि उनका जन्म एक साधारण बच्चे की तरह हुआ, जैसे कि हम नाती पोतों को अपनी बाहों में लेते हैं, आज हम उन्हें एक ऊंची पदवी, नारी और रानी की संज्ञा देते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना अपने में साधारण और गुप्त है, यद्यपि वह शक्तिशाली और परिवर्तनशील से कम नहीं है। इस भांति मरियम की तरह हम भी ईश्वर के संतान के रूप में अपने को पाते हैं कृपा के द्वारा। इसके साथ ही निश्चित रूप में उनकी चाह चुनाव में और उनके मार्गों में आगे चलने के द्वारा यीशु ख्रिस्त में ईश्वर ने नम्र इतिहास की स्थितियों और अपने श्रेष्ठ प्राणी का चुनाव किया है, जिससे वे अपने राज्य के अद्वितीय रूप को प्रकट कर सकें, जिसमें घमंड का कोई स्थान नहीं है और जिसमें हम सृष्टि, सेवा और जीवन के चिंतन की सर्वशक्तिमता को पाते हैं। विला नोवा के संत थॉमस आगे कहते हैं, हम अपनी कल्पना को दौड़ने दें, अपनी समझ को विस्तृत होने दें और अपनी आत्मा को एक युवा नारी की तस्वीर से रेखांकित करें, जो अति शुद्ध, सौम्य, सुंदर, भक्तिमय, नम्र, कोमल, कृपा से पूर्ण, पवित्रता में समृद्ध, सभी गुणों से पोषित, हर आदर्श से ढकी

0: नई तरह की शक्ति भरी है। यह अपने में कल्पना नहीं है, बल्कि यह भविष्यवाणी है। हमें इसकी जरूरत है। जब हम विनाश और अनिश्चितता को पाते हैं, जिससे हम ईश्वर के कार्य को देख सकें और उनकी महिमा कर सकें। संत पापा ने कहा कि छोटे बेतलहम में नबी मीका ने शांति के राजा के आगमन का एहसास किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, जिसकी शांति में हम जीवन यापन करते हैं। आज नन्ही मरियम की ओर आती हुई हम याचना करें कि उनके जन्म का महोत्सव शांति को प्रसारित करे। हम शांति की कामना करते हैं जो हमारे मध्य उपस्थित है, जो सीमाओं और हमारे हृदयों में अंकित है। यह ईश्वर का उपहार है, पुनर्जीवित ईश्वर की सांसें, पवित्र आत्मा के कार्य। आइए हम अपने अंदर शांति को बढ़ने दें। यह विश्व में प्रस्फुटित होगा और अच्छी सलाहकारिणी माता मरियम इसकी प्रेरिताई में हमारी सहायता करे।
1: La madre del buon consiglio ci accompagnerà in questa missione.

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कार्तिक कलीसिया कुंवारी मरियम का जन्म दिवस मनाती है। संत पापलियो चौदहवें ने इस विशेष दिन की याद करते हुए पर्व के रहस्य पर चिंतन किया। उन्होंने एक संदेश में लिखा, आज हम एक छोटी बालिका के जन्म की खुशी मना रहे हैं, जिन्हें अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की मां बनने के लिए बुलाया जाएगा। फिर भी वे एक छोटी बच्ची के रूप में पैदा हुए हमारी गोद में, हमारी बेटियों और पोतियों की तरह। हम उन्हें सबसे ऊंचा एवं महान नाम देते हैं, जैसे महारानी, सर्वश्रेष्ठ नारी इत्यादि। लेकिन ईश्वर का रास्ता आसान और शांत था और है, यद्यपि वे कम शक्तिशाली और कम परिवर्तनकारी नहीं हैं। पश्चिमी अफ्रीकी युवा दिवस 2026 7 सितंबर को घाना के आक्रा में शुरू हुआ। 16 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के युवा कैथलिक इस विषय पर एक साथ एकत्रित हैं। हिम्मत रखें युवा कैथलिक पश्चिम अफ्रीका में शांति और आशा के एजेंट एवं प्रवर्तक। पहले दिन प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और घाना की संस्कृति की जानकारी हासिल की गई, जिसके बाद रोजरी और चिंतन के साथ पौत्र यूखरिस्ट की आराधना की गई। मंगलवार 8 सितंबर को युवाओं ने विश्वास में निहित गवाही में सासी विषय वस्तु के हिसाब से विश्वास एवं सांस्कृतिक विषयों पर बात की। ख्रिस्त त्याग के बाद एक कार्यशाला के दौरान डिजिटल सुसमाचार प्रचार, समाचार क्षेत्र में विश्वास, मिशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, विषय वस्तु पर ध्यान दिया गया। फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग प्रतिनिधियों को अपने अपने देशों के संस्कृति, नृत्य और कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का मौका मिला। तीसरे दिन मिशन के लिए सशक्त विषय के तहत नेतृत्व एवं सामाजिक सहभागिता पर ध्यान

केंद्रित किया जाएगा। धर्मदक्ष के संदेश एवं दिन के वर्कशॉप में दूसरे टॉपिक के साथ साथ पश्चिमी अफ्रीका में सामाजिक बदलाव में युवाओं की भूमिका, जलवायु न्याय, शांति निर्माण और अफ्रीकी उपक्षेत्रों में आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ एवं लड़ाई जैसे विषयों पर बात होगी। गुरुवार को प्रतिभागी विश्वास एवं सेवा में साथ साथ चलना विषय के तहत तीर्थ यात्रा और एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे मिशनरी बुलाहट के बारे में और जानेंगे तथा आगरा की एक पल्ली में मरियम दिवस में हिस्सा लेंगे, जिसमें मरियम पर एक धर्म शिक्षा, वापसी का संस्कार और पौत्र मिसा में भाग लेना शामिल है। मरियम को शांति की रानी और युवाओं के लिए एक आदर्श शिष्य के रूप में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को युवाओं को मिशन पर भेजा जाएगा, जिसकी विषय वस्तु होगी जाओ और आशा को बढ़ने में मदद करो। धर्मदक्ष अपने धर्म उपदेश में उन्हें शांति निर्माता और प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद खाना के प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदक्ष जूलियन कबोरे की अध्यक्षता में पौत्र मिस्सा होगा। अंत में शनिवार 12 सितंबर की सुबह युवा अपने अपने देश लौट जाएंगे और अपने साथ शांति, उम्मीद एवं मेल मिलाप का मिशन ले जाएंगे। पोप लियो 14वें ने वेस्ट अफ्रीका के युवाओं को उनके विश्वास की यात्रा में हौसला दी और उन्हें युद्ध एवं संघर्ष से घिरी दुनिया में प्यार, न्याय एवं शांति का संदेश लेकर जीने के लिए आमंत्रित किया। पोप ने घाना के आगरा में पहली बार वेस्ट अफ्रीका युवा दिवस के लिए एकत्रित हजारों युवाओं को अंग्रेजी एवं फ्रेंच में एक वीडियो संदेश दिया। यह कार्यक्रम 7 से 12 सितम्बर को आयोजित है और इसे पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रीय कैथोलिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने आयोजित किया है। अपने संदेश में पोप ने 16 देशों के धर्मदक्षों की तारीफ की, जिन्होंने युवाओं को अपनी प्रेरिताई की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि साथ बिताए ये प्रभावशाली पल आपको विश्वास में बढ़ने और दूसरों से मिलने और खुलेपन जैसे मूल्यों से और भी ज़्यादा बेहतर बनने में मदद करेंगे। पोप ने कहा कि युवा शक, अनिश्चितता और असुरक्षा के बोझ झेलते हैं, जिससे उनके भविष्य की योजना बिगड़ने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब इतने सारे संकट आपके क्षितिज को धुंधला कर रहे हैं, मैं आपको बिना उम्मीद खोए आगे बढ़ने का हौसला देना चाहता हूँ। अपनी मुश्किलों के बावजूद पोप ने वेस्ट अफ्रीकन युवाओं से कहा कि वे बलिदान की पीढ़ी से नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के आज, कलीसिया के आज हैं। उन्होंने पोप बेनेडिक्ट 16वें का जिक्र करते हुए कहा, युवा क्षमताओं, ऊर्जा, सपनों और उम्मीदों से भरपूर होते हैं और कहा कि उनका युवा होना ही कलीसिया और दुनिया के लिए एक खजाना है। पोप लियो ने युवाओं को अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक साथ चलने की चुनौती का सामना करने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, साथ चलने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अलग थलग, अकेला, एकाकी या बहिष्कृत ना हो, लोग संस्कृति और धर्मों के बीच पुल बनाने वाले बने। उन्होंने कहा कि जैसे यीशु ने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचाना, वैसे ही युवाओं को भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और अपनी यात्रा में सभी को शामिल करना चाहिए। पोप ने आगरा में एकत्रित हुए युवाओं से कहा कि कलीसिया उन पर भरोसा करती है और उनकी नैतिकता पर यकीन करती है। उन्होंने कहा, अपने शब्दों और कामों से हमारी दुनिया को एक मजबूत संदेश दें जो हर तरह के युद्धों और झगड़ों से घिरी हुई है, प्यार, न्याय और शांति के गवाह बने। उन्होंने उनसे अपनी कीमती जवानी को बनावटी खुशियों और दिखावे की वेदी पर कुर्बान करने के बजाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद से आगे बढ़ने की अपील की और उन्हें माता मरियम को सौंप दिया। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदक्ष पॉल रिचर्ड गलागर ने असीसी में एक सेमिनार को संबोधित किया, जिसको संत फ्रांसिस असीसी के निधन की 8वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। महाधर्मदक्ष पॉल रिचर्ड गलागर ने कहा कि सच्ची बातचीत विविधताओं को खत्म नहीं करती, बल्कि सहयोग के जरिए उनके एक साथ रहने के लिए परिस्थिति तैयार करती है। यह सेमिनार इस साल संत फ्रांसिस और मेल मिलाप के रास्ते को समर्पित है। सेमिनार असीसी के मेल मिलाप सभागार में संपन्न हुआ और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।